मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: अरे इस पीड़े तो हमार भातीजा ऑनलाइन घुरी उड़ा
1: है। जी है अम्बर आई टी होम इंटरनेट आपके दीचे बेशी बेशी स्पीड पचंद मत पैकेज थे बेचे नीन आपनार पैकेज और इंटरनेट दुनिया घुरे बेड़ान रकेटर गति से विस्तारित जानते विजिट कर www.ambarit.com.bd।